पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले बिहान 6 बजे।

0: मैं फूल हूँ सुगंध रखे में, मैं चंद्रमा हूँ चमकती में, मैं धरती हूँ आकाश थी में। क्षितिज नै भेटौला मनको प्यास मेटौला, कोमल ओठ तिमी रातो लाली, तिमी मेरो काली म तिम्रो काली।
1: Nice.

डाली है डिस्क्रिप्शन या कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो फटाफट जाके देख। अभी क्या मतलब अभी दिखाया, तो है गाइस अभी गोल्डन प्लेबटन अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली है डिस्क्रिप्शन या कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो फटाफट जाके देख। अभी क्या मतलब अभी दिखाया, और इसीलिए स्विमिंग पूल में ज्यादा देर तक रहने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि स्विमिंग पूल

0: गेम खेलने के फायदे क्या होते हैं? देखो, अगर तुम गेम खेलते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगी। तुम गेम के साथ साथ रियल लाइफ की प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे।
1: If you're

ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए तेरा मेरा हिसाब बराबर। चलो मिलते हैं।

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से।
1: फागुन देखि वैशाख सम्म आगलागी बढ़ी हुन सक्छ। आगोको सही र सुरक्षित प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ।
2: आगोको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउ। सलाई, लाइटर, मट्टीतेल जस्ता ज्वलन

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बजे